जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। महामाई जगदम्बा की आराधना करते हैं, अपने स्पेशल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है दोस्तों? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है उस परम चेतना, उस परम शक्ति को याद करना जिसने हमें यहां भेजा है और जिसने हमें कभी एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। ये तो हम हैं जो भूल जाते हैं उसको, ये तो हम हैं जो ऐसा समझते हैं कि उसको आपकी परवाह नहीं है, उसको है। और वो परम चेतना, वो परम शक्ति कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, महामाई जगदम्बा को याद करते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

जगदम्बा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जय माता की, जय हिंद।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता की, जय हिंद, सुप्रभातम। आपका एक और पावन खूबसूरत दिन में स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर भी। और नवरात्रों का पावन टाइम चल रहा है, आप व्रत रख रहे हैं या नहीं? व्रत रखने का अर्थ केवल भूखे रहना या कुछ स्पेशल भोजन करना नहीं होता। व्रत यानी के उपवास। उपवास का अर्थ होता उप यानी के ऊपर वाला, ईश्वर या तत्व। उपवास, उपवास यानी के ऊपर वाले में वास करना, उसका ध्यान करना, उसका आभास करना, उसको फील करना। शक्ति जो होती है वो सिर्फ पूजने की नहीं, फील करने की चीज होती है। हमारा सनातन हमको बताता है कि हमें कैसे महसूस करना है शक्तियों को, ईश्वर के करीब कैसे जाना है। ईश्वर बाहर बसी कोई सत्ता या चेतना नहीं है, ये वो चेतना है जो आपके भीतर से आपको चला रही है। जब भी कभी खुद को अकेला, तन्हा या परेशान महसूस करें या पाएं, तो याद रखना आप ही के भीतर है वो। मोको कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। इधर उधर मत ढूंढिए, अंदर है वो। ध्यान लगाइए, कोई बीज मंत्र का जाप कीजिए, कोई श्लोक पढ़िए, कोई मंत्र, गायत्री मंत्र, महामाई जगदम्बा की कोई सप्तसती पढ़िए, बहुत सारी हैं। सनातन ने इतने तौर तरीके बताए हैं शक्ति की आराधना के कि हम कोई भी एक पकड़ लेंगे, कोई भी एक बीज मंत्र भी पकड़ लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं की भी। तो 10 महाविद्याओं में जो हमारी 10 महाविद्याएं होती है, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। हर रूप हर एक अलग शक्ति का प्रतीक है। जीवन में जो चाहिए वही हमें मिल जाता है, बस हमें पूजा अर्चना करने का तरीका आना चाहिए और हमें जीवन से क्या चाहिए हमें ये पता होना चाहिए।

पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्ध चंद्र धरी देवी गदा मुदगर धारिणी सावित्री त्रिप्रदा शुद्धा सगोराग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति।

चंड धर्म हरि देवी शुंभासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च रक्त बीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्र हंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेण पुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्रपुज्जा च गृहमाता गुणेश्वरी वज्रपाचधरा देवी जीवामुदगरधारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी अष्टोत्तर शतनामना बगलाया तुय पटेतः

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, कैसे हैं आप। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, 10 महाविद्याओं के स्वरूपों की चर्चा तो जरूर करने वाले हैं। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है या रूपांतरित करना है, या जिंदगी में कोई कलेश है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, या ग्रोथ नहीं हो रही है, या जिंदगी से मतलब सुकून चला गया है, ये सब वापस मिल सकता है 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से। और जरूरी नहीं 10 के 10 रूपों की आपको पूजा करना है, आप किसी भी एक रूप या स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा तो मैंने पहले भी आपको बताई है। 10 महाविद्याओं के 10 अलग अलग रूप है, जैसे कि माँ काली, माँ तारा, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी। नाम जरूर आपने सुने होंगे, हमने पहले भी इन 10 महाविद्याओं के ऊपर कार्यक्रम किए हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10 रूप जो होते हैं ना, ये हमको अलग अलग शक्ति देते हैं। जैसे महाविद्या जो है, पहली महाविद्या मां काली है, क्या है इनके कंट्रोल में, काल परिवर्तन और अहंकार का विनाश। हर इंसान को मां काली की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई अपने काल से परेशान है, किसी को मृत्यु से भय लगता है, या किसी के जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, वो फंसा हुआ है परिस्थितियों के वशीभूत, कंट्रोल में नहीं है उसके कुछ भी, तो और अगर किसी के पास बहुत कुछ है, पैसा है, रुपया, पावर, बहुत कुछ है, लेकिन अहम का भाव आ जाता है, कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, तो अहम का भाव कभी ना हमारे भीतर आए, इसलिए भी हमें मां काली की पूजा करनी चाहिए। और मां तारा का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर जिंदगी में कमी है संरक्षण की और संकट बहुत आते रहते हैं, तब आपको मां तारा की पूजा करनी चाहिए। संरक्षण प्रदान करती है और संकटों से पार लगाने वाली शक्ति होती है मां तारा। अगर आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पा रहे हैं, या आपको संरक्षण की जरूरत है, किसी की सरपरस्ती चाहते हैं, तो मां तारा की गोद में, उनके आंचल में आ जाइएगा।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभातम। और दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ही खास है। वैसे भी नवरात्रों के टाइम पे तो ये जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आपको तो पता ही, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी ये सिखाया है, बताया, धर्म ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि मन को भी पवित्र रखो, तन को भी पवित्र रखो, अपने घर को, अपने हर उस स्थान को पवित्र रखो जहां पर आप मां को बुलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो प्रवेश करे, उनकी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे, तो अपने मन को भी हमें पवित्र रखना चाहिए। जैसे हम अपने तन को नहाकर धोकर पवित्र करते हैं, मन को भी तो पवित्र रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सुना है ना आपने। और अगर मन में पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ होगा ना, किसी के प्रति घृणा, क्लेश, कोई द्वेष भावनाएं, ये सब क्रोध वगैरह जितना भरा होता है ना, तो उनके लिए आने के लिए हमें रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। और ऐसे जगह पर तो आप भी जाना पसंद नहीं करते जहां पर पहले से ही बहुत गंदगी हो। ऐसे स्थान पर क्या आप जाकर बैठना पसंद करेंगे जहां पर साफ सफाई ना हो, गंदगी हो, या आपका वेलकम ना किया जा रहा हो? हमारा वेलकम कैसे होता है? जब हम कहीं जाते हैं, उनसे कहते हैं आइए प्लीज कृपया बैठिए, उनको साफ स्थान दिया जाता है बैठने के लिए, साफ कुर्सी, चेयर, टेबल वगैरह कुछ दी जाती है बैठने के लिए, तभी आपका बैठने का मन करता है। ऐसे ही मां शक्ति को अगर हम बुलाना चाहते हैं अपने जीवन में, उनका आवाहन करते हैं, तो आवाहन करने से पहले जैसे हम अपने घर आंगन को, अपने शरीर को पावन पवित्र करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी पवित्र करना जरूरी है। तो इसका सूत्र है हिलीम हिलीम का जाप करिए, ये एक बीज मंत्र है मां शक्ति का, ओम हिलीम, इसका हमको जाप करना चाहिए। या कोई भी जो भी आप पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए, या मां दुर्गा की तो इतने प्रकार की आराधनाएं होती है, आप कोई भी एक पकड़ सकते हैं, वहां से शुरुआत कर दीजिए। हाथ जोड़कर हर रोज हमको मां दुर्गा से, मां शक्ति से यही क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि अंबे अंबा अंबालिका मा त्रिपुर भैरवी सुंदरी मां पीताम्बरा, हे जगत माता, हे महामाई, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम पवित्र नहीं रह पाते। मोह माया ने, संकटों ने हमको घेर के रखा है, हमें समझ नहीं आता। कृपया हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे जीवन को रूपांतरित करें। अगर ऐसी प्रार्थना आप मां से करते हैं तो आप उनको बुला रहे हैं, यानी आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं।

जिंदगी को अगर बदलना है हमें तो इसकी शुरुआत हमसे होती है। हमसे सबसे पहले हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो हमारी जिंदगी में है, कोई तो कमी हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, जिसको हम बदल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमारा जीवन नहीं बदल रहा। अगर हम ऐसा नहीं सोच पाते तो हम स्थिर है, हम रुक गए हैं। और जो इंसान रुक जाता है, जो अपने आप को परफेक्ट समझता है, वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता। और ग्रोथ की संभावनाएं हर जगह है। इस प्रकृति में सब कुछ चलायमान है, सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है। आप भी हर घड़ी हर पल बदल रहे हैं, शरीर हर घड़ी बूढ़ा हो रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, जमीन बदल रही है। परिवर्तन संसार का नियम है और ये नियम कुदरती है, यानी कि नेचुरल है, यानी कि मां शक्ति की देन है। और शक्ति के हम अनंत रूपों को पूजते हैं। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। 10 महाविद्याओं की भी चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, हमारी 10 महाविद्याओं के रूप स्वरूपों की चर्चा हमने की है। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी की हम बात करते हैं। अब मां त्रिपुर सुंदरी कंट्रोल करती है सौंदर्य, आनंद और चेतना। अगर आपको चाहिए जिंदगी में आनंद आए, कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं फील होती है, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में, कुछ कलह सी है, कुछ परेशानी सी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये जो चेतना का बिखराव है, इसको कंट्रोल करने वाली मां त्रिपुर सुंदरी होती हैं, आनंद की देवी हैं। अगर जिंदगी में आनंद ना आए, खुशियां ना आए, परिवार में आपको कलह सी नजर आनी शुरू हो जाए, तो जिंदगी में और आपके संसार में सौंदर्य का आशीर्वाद आपको देती हैं, आनंद देती हैं। तो मां भुवनेश्वरी की आराधना आप करेंगे जब ब्रह्मांड और व्यापकता आपको फैलानी हो। भुवनेश्वरी है वो, हर चीज उनके कंट्रोल में है, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाएगा अगर आप मां भुवनेश्वरी की पूजा आराधना करते हैं। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन 10 महाविद्याओं की पूजा के तौर तरीके अलग अलग हैं। इस बारे में भी आने वाले कुछ कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस रूप स्वरूप की पूजा आराधना का क्या विधि विधान है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस रूप को पूजकर हमें क्या मिलेगा। मां भुवनेश्वरी की पूजा हमको करनी चाहिए जब ब्रह्मांड से हमको कुछ चाहिए। और मां भैरवी की पूजा तब करनी चाहिए जब हमको तपस्या, अनुशासन और शक्ति चाहिए। शक्ति हमारी जिंदगी को बदलने की शक्ति, संसार हमारी शक्ति का लोहा माने। अनुशासन, जब जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है ना, तो अनुशासन चाहिए होता है। हमें परफेक्ट एक जिंदगी, एक रूल फॉलो करने होते हैं, वो अनुशासन से आता है। मां भैरवी अनुशासन की देवी है। और तपस्या, कामयाबी बिना तपस्या के नहीं मिलती। जो लोग बोलते हैं किसी को ऐसे ही सक्सेस मिल गई, कामयाबी मिल गई, वो मूर्ख होते हैं। मूर्खों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का केवल एक तरीका है, कठिन मेहनत। दूसरे की कामयाबी को देखकर हमें लगता है ऐसे ही मिल गई होगी। इस कुदरत का नियम है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। अगर हमें कुछ चाहिए तो बहुत कुछ मेहनत के रूप में हमें करना भी पड़ता है। हर चीज की कीमत होती है, कामयाबी की कीमत खून पसीने की मेहनत होती है। जय हो महामाई जगदम्बा, अंबे अंबा अंबालिका। और 10 महाविद्याओं की हम इसमें शरण ले सकते हैं। आगे चर्चा जारी रहेगी। सुप्रभात।

बातों ही बातों में कई बार बात दूर तक निकल जाती है, और बात जब दूर तक जाती है तो बात बहुत काम की होनी चाहिए। और ये काम की बात सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रों का पावन समय चल रहा है, हम सभी पूजा आराधना तो करते ही है, लेकिन क्या ठीक कर रहे हैं? नहीं ना, ये हमको पता नहीं होता। हम इंसान है, गलती तो सबसे होती है, इंसानों से ही होती है। तो हर पूजा आराधना को करने के बाद, हर प्रकार के हवन करने के बाद, ऐसा उल्लेख मिलता है हमारे धर्म शास्त्रों में कि हमें क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि हे माँ जगदम्बा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, आपकी पूजा को करने में, आपकी आराधना को करने में हमसे कोई गलती हो गई हो, तो कृपया क्षमा करना, क्योंकि हम बालक है नादान, हमको नहीं पता कि क्या गलती हमसे हो गई। हमारी पूजा को स्वीकार करना, और कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा भी करना, इसे क्षमा याचना बोलते हैं।

सुप्रभात, मैं हूं वास्तु कृष्णा। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी बीती कड़ियों में भी मां शक्ति के अनंत रूपों की बात की है, आज के कार्यक्रम में भी हम बात कर रहे हैं। तो बात की थी हमने थोड़ी देर पहले मां भुवनेश्वरी, मां भैरवी की, मां छिन्नमस्ता की पूजा हमको कब करनी चाहिए। त्याग, आत्मबल और जीवन की ऊर्जा जब चाहिए। त्याग ना बहुत बड़ा गुण होता है इंसान का। कई बार हमें लोगों से बड़ी उम्मीद होती है, परिवार से उम्मीद होती है, लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो त्याग की भावना होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये त्याग की भावना है। और ये आना इतना आसान नहीं होता है। आत्मबल, आत्मबल की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस संसार में। आत्मबल न सिर्फ अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी आत्मबल चाहिए। कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, मजबूती से लड़ने के लिए जीवन की ऊर्जा भी चाहिए, आत्मबल भी चाहिए, और त्याग की भावना तो परमानेंट चाहिए। और मां छिन्नमस्ता ही हमें देती है। मां धूमावती की पूजा अर्चना उन लोगों को करनी चाहिए जो अब जीवन से ऊब चुके हैं, जिनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। मतलब उनको कुछ, उनको दिख गया है दुनिया में कि ठीक है, सब बढ़िया है, सब जी लिया, भोग लिया, अब हमको वैराग्य की तरफ जाना है, अब भगवान तेरी शरण में हमको जाना है। और इसका आशीर्वाद हमको मिलता है मां धूमावती के चरणों में। वैराग्य और जीवन की कठिन सच्चाइयों की देवी है। जिंदगी की असली सच्चाई क्या है, ये जो दिखाती है मां धूमावती है। और इनकी पूजा का भी एक अलग विधान होता है, उसकी भी आने वाले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। माँ मातंगी, माँ मातंगी हमको क्या देती हैं? वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की देवी हैं। तो जब भी आप कोई कलाकार हो, वाणी का कोई काम करते हो, मान ले आप बड़े कोई प्रख्यात वक्ता हो, आप प्रोफेसर हो, संगीत से जुड़े हो, कला से जुड़े हो, तब आपको माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। वाणी का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। और हाँ, सुनिए, स्तंभन की देवी है माँ बगलामुखी। संयम, विरोधियों को कंट्रोल करने वाली और आपके खिलाफ दुश्मन खड़े ना हो जाएं, माँ बगलामुखी कंट्रोल करती हैं उसको। और माँ कमला समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी। हर परिवार को क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए। खुशहाली कैसे आती है? पैसे से आती है, समृद्धि से आती है। खुशहाली की देवी माँ कमला है। समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य, यही तो आशीर्वाद हर बड़ा बुजुर्ग देता है। हम यही तो चाहते हैं मंदिरों में जाकर, यही तो मांगते रहते हैं। तो माँ कमला है जो इसको कंट्रोल करती हैं। देखिए, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, प्रतीकात्मक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है ना, जिसके मन में बस जाती है शक्ति, वहीं स्फुटित होती है, वहीं से अंकुरण निकलता है, एक नई लौक वहीं से जल उठती है। जिंदगी को बदलना है तो हमें खुद इस बात को फील करना होगा कि महाशक्ति, महामाई जगदम्बा, अंबे अंबा, अंबालिका माँ, त्रिपुर भैरवी सुंदरी माँ पीताम्बरा, ह्लीम ह्लीम ह्लीम, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याहम कीलय बुद्धिम विनाशय, ह्लीम ओम स्वाहा। जीवन से सभी कष्टों को खत्म कर दें पल भर में।

ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा।

0: Avan, Tolera, Kanchi Dham, Tehri, Kasoli, Goa and even Andaman starting at just 12 lakhs. For more details contact us at 9999926127.
1: Subharti Cancer Hospital. Yahan aapko sirf upchar nahi milta, aapko milta hai pyar, samarthan aur sabse zaruri ummeed. Hum jante hain ki har mareez ki zindagi ki kahani alag hoti hai aur hum har kahani ko जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्योनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को

चाहते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खान पान से होती है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी के डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई, वस्तु कृष्णा के साथ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर।
2: अरे स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई, मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है। आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बतावेंगे जी। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
0: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आवे थे।
0: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
1: देखो ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: यू हो जाए।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
1: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
1: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब यह है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
1: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगी?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
1: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
1: देखो बात यो है, क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हो गया है यो, इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूं
0: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
0: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
1: ना जी ऐसा तो ना है, इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, पहला गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
0: अच्छा
2: उसमें बिल्कुल देरी ना।

0: बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को आईवीएफ सीएम दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
1: बिल्कुल हो जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
2: जी।
1: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आईवीएफ सीएम से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को आईवीएफ सीएम दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सेहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
1: गलत। आईवीएफ सीएम देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: यानी आईवीएफ सीएम हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे?
3: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। आईवीएफ सीएम जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
0: अगर आईवीएफ सीएम लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
0: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर ले, तो क्या आईवीएफ सीएम घर पर भी लगवाया जा सकता है?
3: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर यह बिल्कुल नहीं होने का।
0: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को आईवीएफ सीएम दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए सेहतिया जी?
1: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
3: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
0: जी,
3: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
1: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं इस खास कार्यक्रम को जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। ये तो मैं आपको कई बार पहले भी बता ही चुका हूँ। जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति सिर्फ आपके अपने सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी समस्या जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या शरीर को अंदर से कमजोर कर सकती है। जी हाँ, खून की कमी यानी के एनीमिया। और सबसे जरूरी बात, एनीमिया सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, ये बच्चों को हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एनीमिया क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। साथियों, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो एनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बार बार थकान महसूस होना, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और काम करने में मन न लगना, चेहरा और त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर से मैं ये लक्षण आपको बता देता हूं। एनीमिया यानी खून की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं, लगातार कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन अक्सर तेज महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपका चेहरा अब दमकना बंद हो गया है, चेहरे पर मायूसी लटकी हुई है, त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना शुरू हो चुकी है, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब बच्चे, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं सब में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार इन लक्षणों का कारण एनीमिया ही हो ये भी जरूरी नहीं, इसलिए जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन की जांच और अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेना।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो और आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है। आज हम एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी खून की कमी। ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिलाओं सब में हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कि ये हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। लगातार चक्कर आना, सिर दर्द होना, सांस फूलना, कमजोरी होना, थकान होना, चेहरा अब थोड़ा मायूसी सा भर गया है, ऐसे लटका हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन हो गया है, ये खून की कमी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो गई हो। अब बात करते हैं महिलाओं के विषय में। महिलाओं में भी एनीमिया का खतरा कई कारणों से बढ़ सकता है दोस्तों। खास तौर से मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त स्राव होना, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। गर्भावस्था में मां के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए भी पर्याप्त पोषण होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई आयरन की फोलिक एसिड वाली दवाई को उन्हें सलाह के अनुसार जरूर लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। अक्सर सोचा जाता है कि पुरुष तो मजबूत होते हैं, कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुषों में भी खून की कमी हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर किसी पुरुष को लगातार कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो रही है, इसे केवल काम का तनाव, डिप्रेशन या नींद की कमी मानकर मत छोड़ दीजिएगा। डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों में एनीमिया के पीछे आयरन की कमी के अलावा कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजादी रेडियो और आज आप सुन रहे हैं यहाँ पर यह स्पेशल कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में एनीमिया यानी खून की कमी के कारण। हमने बात की पुरुषों में कैसे खून की कमी हो सकती है, महिलाओं में कैसे हो सकती है, और बड़े बूढ़ों में तो खैर हो ही सकती है, बच्चों की भी बात करते हैं। दोस्तों, बच्चों में खून की कमी उनके शारीरिक विकास, सीखने और रोजमर्रा की सक्रियता को प्रभावित कर सकती है। बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। बच्चा बार बार थका हुआ आपको दिखाई देगा। आप बोलेंगे पढ़ ले, खेल ले, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में और खेलने में। वो लेट जाएगा, फोन देखने में मस्त हो जाएगा। उसको रेस्ट करना ज्यादा आरामदायक लगेगा, अच्छा लगेगा। कमजोरी है ये दोस्तों, खून की कमी है दोस्तों ये। उसका विकास अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हो रहा है और माता पिता को स्वास्थ्यकर्मी अपने डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेकर जाना चाहिए। बच्चों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, राजमा, लोबिया, पौष्टिक अनाज और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक जो भी आपके क्षेत्र में, आपके आसपास या आपके घर पर उपलब्ध है। अगर आप घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको भी शामिल करें, अंडा वगैरह शामिल करें, दूध दही शामिल करें। आयरन की दवा बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के बाद ही दीजिएगा। अपनी मर्जी से बच्चों को कुछ भी खिलाना शुरू मत कर दीजिए। पहले बच्चे की अच्छे से जांच करवा लीजिए, उसके खून की जांच करवाइए, एनीमिया है या किसी और चीज की कमी हो गई है। बच्चों में आजकल स्ट्रेस की, डिप्रेशन की जो शिकायत वो भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी और थकान लोगों को अक्सर सिर्फ उम्र का असर मान लेते हैं, है ना। ऐसा होता है कि उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो गए, तो ये तो उम्र के साथ होता ही है। लेकिन लगातार थकान, सांस फूलना, चक्कर आना कमजोरी के कारण हो सकते हैं, एनीमिया के कारण ये बन सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों में ऐसे लक्षण लगातार अगर बने रहे तो समय पर जांच करवाइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, एनीमिया का मतलब हमेशा सिर्फ आयरन की कमी नहीं होता, इसके कारण और भी होते हैं। इसीलिए बिना जांच के खुद से आयरन की गोलियां खाना मत शुरू कर दीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो आसान तरीका क्या है, मंत्र क्या है, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना। आपको खाना ऐसा खाना है जो बहुत ही पौष्टिक हो। सिर्फ तला भुना या बाजार का मत खाते रहिए, जो जरूरी है वो खाइए। सही समय पर जांच करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाकर आपको बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जब डॉक्टर बोले तब दवाइयों को आपको खाना चाहिए। अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल कीजिए, चने का इस्तेमाल कीजिए, राजमा, लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार या बाजारों का भोजन कम कर दीजिए। भोजन में विटामिन सी से भरपूर मात्राएं लीजिए, जैसे कि आंवला होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, इनको आप खाइए। आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है ये विटामिन सी, इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, कमजोरी को हमेशा सामान्य मत समझिए। जरूरत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवाइए, ये बहुत मददगार रहेगी आपके लिए। खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती दोस्तों, लेकिन सही समय पर पहचान होना और सही समय पर सही तरीके से इलाज हो जाए तो इससे निपटना बहुत आसान है।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हमने एनीमिया के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पर बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस समस्या को छोटा मत समझिए। लगातार चक्कर आना, याददाश्त का कमजोर होते रहना, सिर्फ अपनी मर्जी से आयरन की गोलियां मत खाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक भोजन लेना है, सबसे जरूरी अपने डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए, जब डॉक्टर बोले वो खाइए, वो दवाइयां बोले तो दवाइयां खाइए, वो बोले कि अच्छा खाना पीना आपको लेना है तो पौष्टिक भोजन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इसको समझना, पहचानना और इसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं, अपने परिवार में सिर्फ खाना भर नहीं, पोषण भी देखेंगे। सिर्फ चटपटी चीजें नहीं खानी बनानी है, अच्छी चीजें भी बनानी खानी है। पार्टी का भी दिन रख लीजिए, लेकिन रोजमर्रा में आपको अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें वगैरह खाइए। बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं बाहर का खाना, उनको मोमोज खाने हैं, बर्गर, चाउमीन और ना जाने क्या क्या खाना होता है ना, चिप्स, पैकेट वाली चीजें खानी होती है। पैकेट वाली चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चों को और बुजुर्गों को, याद रखेगा ये बात, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आती है बाजारों में उपलब्ध होती है, कोशिश करें किसी खास ओकेजन पर बच्चों को पार्टी के लिए किसी एक दिन दे दीजिए। रोजमर्रा में आपके बच्चे में लगातार खून की कमी हो सकती है अगर आप अच्छा खाना उनको नहीं देते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाजारों की चीजों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। पैकेट बंद चिप्स मत खाइए, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा चटपटी चीजें मत खाइए। अपने घर में चिप्स बनवा लीजिए अपनी मम्मी से, अपने घर में अच्छी चाउमीन भी बनवा सकते हैं। देखिए बाजारों में क्या चीज किस तरह की आ रही है नहीं पता, इसलिए घर पर चीज बनवाइए, खाइए और कोशिश कीजिए दालें, प्रोटीन युक्त भोजन, पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, अच्छी रोटी वगैरह खाना, इनको शामिल कीजिए। खून की कमी आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो या पुरुष, सभी के जीवन में जरूरी है इसको पहचानना और समय पर इसको समाप्त कर देना। और याद रखिए दोस्तों, कमजोरी को सिर्फ थकान कहकर नजरअंदाज आज के बाद मत कीजिएगा। बीमारी का इंतजार नहीं करना है, समय पर जांच करानी है। स्वस्थ शरीर, मजबूत परिवार, स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारे अपने खुद के शरीर से और स्वास्थ्य से होती है। मैं हूं आपका दोस्त वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाले प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:10 हो गए हैं, 14 अक्टूबर आज की तारीख है और दोस्तों आज का दिन है बुधवार। वेल दोस्तों, गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब, गुड वाला फॉर्मूला ऑफ द डे मेरे पास है आपके लिए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि गहराई मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। और दोस्तों ये जो विचार है हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल साधन सुविधाएं या योग्यता होना ही काफ़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका आंतरिक साहस यानी कि इनर करेज होता है, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास होता है। इसीलिए जब हमारे सपनों में स्पष्टता और उन्हें पूरा करने का गहरा जुनून होता है तभी हम किसी भी लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाते हैं। केवल इच्छा रखना काफी नहीं है मेरे दोस्त, उस इच्छा के पीछे एक मजबूत संकल्प होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता का तात्पर्य ये है कि आपके पास चाहे कितने भी साधन या अवसर हों, अगर आपके अंदर प्रयास करने की हिम्मत और जज्बा नहीं है तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। इसके विपरीत सीमित संसाधनों में भी यदि आपका हौसला और इच्छा शक्ति अटूट है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेते हैं, है ना। और जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रुकावटें और चुनौतियां आना स्वाभाविक है। इस बात को बिल्कुल भली भांति रूप से आप एक्सेप्ट करना सीखें। हौसला वो शक्ति होती है जो आपके आपको गिरने के बाद फिर से खड़े होने और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको देता रहता है। तो इसलिए अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास बनाए रखें। परिस्थितियां कैसी भी हों दोस्तों, अपना मनोबल जो होता है उसको कभी गिरने ना दें। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन निरंतर हौसले और प्रयास से एक दिन जरूर मिलती है, इस बात को आप अपने जहन में रखें। तो आज मैं परिस्थिति चाहे जो भी हो ऐसा आप संकल्प ले सकते हैं, अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दूंगा या दूंगी और अपने लक्ष्य की ओर एक सकारात्मक कदम जरूर उठाऊंगी, है ना। इस बात को आप रोज दोहराएंगे तो शायद आपको जो सफलता है वो जरूर मिलेगी। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, किसी गाने की फरमाइश करनी है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। फिलहाल ये गाना आपकी खिदमत में, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑन बेस फर्स्ट। और दोस्तों, 9:26 हो गए हैं। 14 अक्टूबर आज की तारीख है और इसी के साथ बुधवार आज का दिन है। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार का होना प्यार है मूवी का काफी बेहतरीन सा गाना भी हमने इंजॉय किया। चलिए, क्योंकि आज का दिन क्या कहता है इसके बारे में भी हम अक्सर आपसे बात करते हैं, संसार की बातें आपसे बताती हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो आपको बताती हूँ कि आज क्या जो दिन है वो क्यों हो जाता है खासम खास। 1882 की बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आज ही के दिन हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान शिमला लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं 1956 की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि में अपने 385,000 से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इतिहास में ये सामूहिक धर्मांतरण की सबसे बड़ी घटनाओं में जो है कंसिडर किया जाता है। उन्होंने अपने समर्थकों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 22 बौद्ध प्रतिज्ञाएं भी दी थी। वहीं 1964 की बात करें तो अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों और नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए अहिंसक संघर्ष करने वाले महान नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी आज ही के दिन हुई थी। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जलियांवाला बाग यात्रा भी आज ही के दिन 1997 में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने भारत यात्रा के दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी 1997 में। और क्या कहता है आज का दिन और आज का इतिहास, बताऊंगी आपको सारी की सारी बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। राजा मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आ रही हूं, तो इस गाने को इंजॉय करेंगे। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइएगा। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 9639011 नंबर हो जाता है मेरा। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी, या आप जा सकते हैं मेटा पर, और आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। यस, यूट्यूब पर भी आपको हमारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, आप वहां पर भी इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है आजाद हिंद रेडियो। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आरजे वंशी के साथ।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, सेहत सखी संसार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आरजी वंशी के साथ। 9:45 हो गए हैं और 14 अक्टूबर आज की डेट है। एंड दोस्तों, आज ना हम आज ही की तारीख के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बता रही थी कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास। भारत के 7वें मुगल सम्राट का जन्म इसी के दिन हुआ था, जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम, 1643 में इनका जन्म हुआ था। और वहीं आपको बताऊँ, भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विदेशों में भारत की आज़ादी की अलख जगाने वाली जो पार्टी रही, उसके मुख्य संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म भी आज के दिन हुआ था 1884 में। वहीं आपको बताऊं, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले परमवीर चक्र मरणोपरांत के से सम्मानित भारतीय सेना के वीर सपूत सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म भी आज के दिन 1950 में हुआ था। और गौतम गंभीर, जो कि भारत के जाने माने बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज के नाम से इनको जाना जाता है, और विश्व कप 2007 T20 और 2011 वनडे के फाइनल मुकाबलों के नायक रहे हैं, इनका जन्म भी 1981 में आज ही के दिन हुआ था। तो इसलिए आज का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। वहीं आज क्या है इम्पॉर्टेंट, यानी कि स्पेशल डे के रूप में हम बात करें, इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत ही प्यारा सा गाना हम एंजॉय करेंगे। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: 93.0 FM.
1: वंची बेन आपरा मला कमा माया रो मानवी माया मेल।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार, क्योंकि बातें अभी चल रही हैं संसार के बारे में ही। चलिए कुछ ऐसी बातें आपसे साझा कर देती हूँ जो आज के दिन को और भी ज्यादा खास बना देती है। देखिए, आज की तारीख है 14 अक्टूबर और आज के दिन विश्व भर में मनाया जाता है विश्व मानक दिवस यानी के वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, उद्योगों और रेगुलेटर्स के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण यानी के स्टैंडर्डाइजेशन के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। स्टैंडर्ड्स किसी उत्पाद, सेवा या प्रणाली की गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को तय करने वाले वे नियम या दिशा निर्देश होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अलग अलग कंपनियां या देश एक तय गुणवत्ता और सुरक्षा के दायरे में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका इतिहास और शुरुआत क्या कहते हैं, चलिए इस बारे में भी आपको बता देती हूँ। 14 अक्टूबर 1946, जी हाँ 1946 को लंदन में दुनिया भर के 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे जिनका उद्देश्य मानकीकरण के समन्वय और एकीकरण को सुगम बनाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना था। वहीं इसी बैठक के फलस्वरूप 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी के ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का औपचारिक गठन हो गया था। बाद में 1970 में तत्कालीन ISO अध्यक्ष फारूक बेन अमूर्त द्वारा 14 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर विश्व मानक दिवस के रूप में घोषित इसको किया गया ताकि उस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब वैश्विक मानकों की नींव रखी गई थी। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, लेकिन तब तक के लिए आप सुनते रहिए यूं ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट विद योर आरजे वंशी। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, अभी ना मैं आपसे बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले आज की तारीख के बारे में, और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर हमने बात की इसकी हिस्ट्री के बारे में, हमने बात की इसके इम्पोर्टेंस और इसके विजन के बारे में, वहीं चलिए आपको लेकर चलती हूँ कि प्रमुख वैश्विक मानक संस्थान कौन से हैं। देखिए, आपको बता दूं, ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें कि औद्योगिक, तकनीकी और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए वैश्विक मानक तैयार किए जाते हैं। वहीं बात करें IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, जो कि बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। और ITU के बारे में आपको बताऊं तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसके अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT और दूर संचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मानक स्थापित किए जाते हैं। वहीं ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैटर क्यों करते हैं, इनका महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा सबसे पहले इसके इंश्योर हो जाती है, जैसे कि बिजली के उपकरण, बच्चों के खिलौने, दवाइयाँ और खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, यदि निर्धारित मानकों जैसे कि भारत में ISI, BIS या वैश्विक स्तर पर ISO के अनुसार बनी हो, तो वो सुरक्षित मानी जाती है। और भी कुछ ऐसे मानक हैं और इनकी महत्वता है, बताऊंगी आपको, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा। यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: फोन रिया।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
0: नॉट लिसनिंग टू
1: यू। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या

0: आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रही हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, फिर से आ गई हूँ आपके पास। आप सुन रहे हैं सेहत सुखी और संसार के बारे में बात कर रही हैं। और क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे, यस, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। और जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले इसके इतिहास के बारे में बताया और कुछ ऐसे वैश्विक मानक संस्थान भी बताए जो कि प्रमुख कंसिडर किए जाते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं, चलिए इस पर हम बात कर ही रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंज्यूमर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, जैसे कि भारत की बात करें तो ISI, BIS या वैश्विक स्तर पर ISO के अनुसार अगर कोई वस्तु कोई चीज बनी हो तो वो सुरक्षित मानी जाती है। वहीं हम बात करें पारस्परिकता और सुगमता के बारे में, तो मानकीकरण के कारण ही आज दुनिया के किसी भी कोने में बना चार्जर आपके फोन में फिट बैठता है या USB केबल हर प्लेस पर काम करती है। वहीं ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करें तो जब देश और कंपनियां एक जैसी तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन करती हैं तो सीमा पार व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा ही आसान हो जाता है। वहीं पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा की बचत करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े मानक तय किए गए हैं। दोस्तों, और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि भारत में मानकीकरण की कंडीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या कहती है। भारत में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो यानी के BIS, जिसे आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय निकाय के रूप में काम करती है। और ये विभिन्न उत्पादों के लिए ISI मार्क, हॉलमार्क जो कि सोने की शुद्धता के लिए माना जाता है, और अन्य गुणवत्ता प्रमाणन जारी करता है ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतरीन और सुरक्षित उत्पाद मिल सके। तो आज आप किस मानक को देख करके शॉपिंग करने वाले हैं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और आगे आगे तो फेस्टिव सीजन है, मानक को देख करके जरूर आप शॉपिंग करें क्योंकि ये काफी सारी चीजों को इंश्योर करता है। कंज्यूमर सेफ्टी की बात, इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें, या बात करें ग्लोबल ट्रेड की, या बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, है ना, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। फिलहाल चलिए हम सुनेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
3: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ, क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारी सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर हमारे आजाद हिंद रेडियो से। बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको जाना होगा सर्च करने के लिए आजाद हिंद रेडियो और बहुत ही आसानी से आपको हमारा अकाउंट मिल जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मेटा पर अगर आप आजाद हिंद रेडियो सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज जरूर मिलने वाला है। आप उससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और हम तक अपनी बातें सीधे पहुंचाइए। और साथ ही साथ आप बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हमारी पहुंच से दूर, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से दूर और आप तक हमारी रीच नहीं बन पा रही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें, तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपनी किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी, और प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखिया और संसार। और दोस्तों, सेल सेल सेल, देखिए फेस्टिव सीजन आ गया है, सेल की भरमार अब लगने वाली है, ग्रेट डिस्काउंट्स आपको मिलने वाले हैं, और ऐसे में आप ललचाने वाले हैं, लालच में आने वाले हैं ना, और इसी लालच को कंट्रोल करना है। चलिए इस पर आज बात करेंगे। अक्सर जब आपने देखा होगा फेस्टिव सीजन आता है तो भारी भरकम डिस्काउंट के साथ सेल लगी हुई होती है, और आप उस लालच में आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसी चीजों की शॉपिंग कर बैठते हैं जो शायद अभी आपकी जरूरत थी ही नहीं। तो आप इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे कुछ बातें करूंगी। जैसा कि हम अक्सर कहीं से गुजर रहे होते हैं और उस दौरान अगर हमें दिख जाए कि 80% ऑफ जैसा कोई बैनर लगा है, और अक्सर लोग भावनाओं में बह करके गैर जरूरी सामान खरीद लेते हैं, इंक्लूडिंग हम भी, है ना। तो अगर आप अपना बजट खराब होने से बचाना चाहते हैं तो शॉपिंग करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ही बातें अभी मैं आपसे साझा करने वाली हूँ। देखिए, जब सेल शुरू होती है तो उसके पहले की वो लोग तो तैयारियां करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को यानी कि कस्टमर्स को भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है पहले से। वो क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमें तैयारी करनी है मांग यानी के नीड और वांट में हमें फर्क समझना है, यानी अपनी जरूरतों की एक आपको प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है। मतलब जो आपको चाहिए चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो सामान बहुत जरूरी है, जैसे कि खराब हुआ होम अप्लायंस या जरूरी कपड़े उसमें हो सकता है, तो उसे ही लिस्ट में सबसे ऊपर आपको रखना है। ठीक है, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद आपको बजट तय करना है। ये तय करना है कि आपको कुल मिलाकर के अधिकतम कितना खर्च करना है। जब तक आपकी एक निश्चित सीमा तय नहीं होगी, तब तक आप ओवर स्पेंडिंग यानी के ओवर खर्चा करते रहेंगे, और वो आपसे जरूर होगा, क्योंकि ये बजट फिक्स कर लेना जो आदत होती है, ये काफी हद तक अच्छी मानी जाती है, ताकि आपका ज्यादा खर्चा ना हो और वो खराब वाला खर्चा ना हो, फिजूल खर्चा, जिससे आप बचना चाहते हैं हमेशा से ही। बिल्कुल वैसे ही विश लिस्ट बना करके आप रखें। देखिए, सेल लाइव होने से पहले ही जरूरी सामान कार्ट, या अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कार्ट में, या विश लिस्ट में जोड़ लेना एक समझदारी वाली बात होती है। सेल शुरू होते ही सीधे अपनी विश लिस्ट खोलें, ताकि आप पूरी वेबसाइट ब्राउज करके बहकावे में ना आए। देखिए, ये ना एक मैं कहना चाहूंगी ट्रैप होता है, जब आप पूरी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो जो चीज आप खरीदना चाहते थे उसको तो शायद आप भूल जाते हैं, और आपको कुछ और नजर आ जाता है, कुछ और पसंद आ जाता है, तो आप उसे भी कार्ट में डाल लेते हैं, और फिर आपको बाद में याद आता है कि ये तो मुझे खरीदना ही नहीं था, मुझे तो मेरी विश लिस्ट में से कुछ खरीदना था। तो इसीलिए जब भी आपको कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको विश लिस्ट में या कार्ट में ऐड करके रखें, ताकि जैसे ही सेल शुरू हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप बिल्कुल उसको ऑर्डर कर सकें और पूरी वेबसाइट को ब्राउज करने से बचें। ये आपका जो है फालतू खर्चा करा सकता है। वहीं डिस्काउंट्स और कीमतों की सच्चाई आपको जांच लेनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बताऊंगी आपको, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए हाजिर हूँ. फिर से आपके पास प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार. और फिलहाल अपने सखियों से मैं बातें कर रही हूँ, भाई बहनों से अपनी बातें कर रही हूँ, क्योंकि शॉपिंग तो जनाब सभी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं. लेकिन हाँ, इस फील्ड में ज्यादा एक्टिवनेस आपको महिला की ही दिखेगी, तो इसलिए कंसिडर कर लिया जाता है कि महिलाएं ही शॉपिंग करती हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो शॉपिंग है वो पुरुष भी करते हैं, और इवन शॉपिंग जो है वो पुरुष ही कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से डिस्काउंट्स और कीमतों की सच्चाई को आप जांच सकते हैं अगर आप सेल में जा रहे हैं, ताकि आप अपनी जो थोड़ी सी धनराशि है उसको थोड़ा सा बचा सके. जैसे कि फेक डिस्काउंट से आपको बचना है. कई बार कंपनियां सेल में 2 से 3 दिन पहले प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा करके उस पर बड़ा डिस्काउंट दिखा देती हैं, तो ये होता है फेक डिस्काउंट. इससे आपको बचना होगा. ओके, तो इसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? आपको करनी होगी थोड़ी सी रिसर्च. बाकी की कंपनियों पर आपको विजिट करना होगा और वहां पर आपको कंपैरिजन करना होगा. वहीं प्राइस हिस्ट्री ट्रैकर, यस, जैसे कि प्राइस बिफोर का उपयोग करके देखें कि पिछले 2 से 3 महीने में उस सामान की असली कीमत क्या थी. ये भी आप एक ट्रिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं जहां पर लिखा हो 70-80% ऑफ, इसके लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं आना. देखिए, सिर्फ बड़ा डिस्काउंट टैग देख करके सामान आपको नहीं खरीदना है, बल्कि खुद से ये पूछना है उस वक्त, अगर ये सामान बिना डिस्काउंट के होता तो क्या मुझे इसकी जरूरत थी भी या नहीं. जवाब आपको बिल्कुल आपके पास मिल जाएगा. वहीं आपको बताऊं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जो तुलना है वो जरूर आप करके देखें. ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या गैजेट्स जो होते हैं, अक्सर ऑनलाइन बैंक ऑफर्स में सस्ते पड़ जाते हैं. जबकि कपड़ों की बात करें, फर्नीचर की बात करें, या बर्तन और सजावटी सामान जो होता है, वो जो लोकल मार्केट होती है आपकी, जो ऑफलाइन है, उसमें छूकर देखने और मोलभाव करने पर ज्यादा बेहतर और सस्ते मिल सकते हैं. ये वैसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सही है कि कपड़े को जब तक आप अपने हाथ से छूकर जांच नहीं लेते, परख नहीं लेते, तो उसकी शॉपिंग करने में मजा ही नहीं आता. और स्पेसिफिकली स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जब तक उन्हें पता न चल जाए कि इसके कपड़े की जो वैरायटी है वो कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तब तक मजा ही नहीं आता, बात ही नहीं बनती. और बिल्कुल वैसे ही बर्तनों के साथ है.

और बिल्कुल वैसे ही फर्नीचर के साथ भी है। तो ये चीजें तो अक्सर आपको ऑफलाइन ही अच्छे मिल जाती हैं, तो ये चीज आप ऑप्ट कर सकती हैं। वहीं पेमेंट और हिडन चार्जेस का जो गणित होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111। फिलहाल ये गाना आपके नाम।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल घोरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर के फिर से आ गई हूँ आपके पास, और पेमेंट और हिडन चार्जेस का जो गणित है इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में जब जब फेस्टिव सीजन आता है तो सेल लगना लाजमी है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जब फेस्टिव सीजन नहीं भी होता, ऑफ सीजन में भी सेल लगना बहुत ही आम बात हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब तो ऑफ सीजन चल रहा है, अब तो सस्ता सस्ता सस्ता ही मिलेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं भ्रम ही होता है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। बाकी फिलहाल समझ लेते हैं पेमेंट और हिडन चार्जेस का जो मैथमेटिक्स होता है ये क्या कहता है। देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई की शर्तें आपको समझनी होंगी। नो कॉस्ट ईएमआई में बैंक भले ही ब्याज आपका माफ कर देता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फी होती है उस पर लगने वाला 18% जीएसटी आपको ही देना होता है। इस अतिरिक्त खर्च को आप जरूर जोड़ें, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके, अनदेखा करके बिल्कुल भी ना चलें। वहीं अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो उसका आपको लाभ ले लेना चाहिए, लेकिन 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाने के लिए बेवजह 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा सामान आप बिल्कुल ना जोड़े, इससे आपका नुकसान ही होगा, कोई फायदा इसमें आपका नहीं होगा। वहीं पेमेंट करते समय ध्यान आपको देना है कि बिल में फालतू का पैकेजिंग चार्ज, डिलीवरी फीस या अनचाहा इंश्योरेंस तो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, जो आपकी जानकारी में नहीं है, उसको भी आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करें। और डार्क पैटर्न से बचें। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना। और आपको कुछ कहना है, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है, या आपको किसी गाने की फरमाइश करनी है, तो नंबर बड़ा ही आसान सा है, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और यूं ही सुनते रहिए सेहत सखी और संसार, ओनली ऑन आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम विद मी आरजे वंशी।

Hi everyone, I am Kapil Ghori, the International Fashion Show Director. आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM. Nation first, always first.

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: You are listening to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों बहुत सारी बातें लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास, और क्योंकि आज ना मैं आपसे बातें कर रही हूँ सेल के बारे में. यस, जब सेल सेल सेल आप सुनते हैं तो आपका जो मैं कहूँ ऐसा हार्मोन है जो खर्चा करने वाला है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको लगता है कि सेल में सब कुछ सस्ता ही मिलेगा तो शॉपिंग कर ही लेते हैं. तो इस भ्रम से आपको निकलने की जरूरत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हाँ, स्मार्ट अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उससे कुछ फायदे आपको हो सकते हैं. चलिए आपको डार्क पैटर्न्स जो होते हैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ. ये क्या होता है, केवल दो पीस बचे हैं अगर आपने ये लाइन सुनी हो, या डील सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगी. ये भी आप लाइन जरूर अक्सर सुनते रहते होंगे जब सेल चल

अपना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज वाकई आपको चाहिए, आप इसकी जरूरत में है, तो बिल्कुल उस चीज को आप ऑर्डर करेंगे, वरना आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि इसकी तो कोई खास जरूरत है ही नहीं। वहीं और भी कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है इसी विषय पर, लेकिन करूंगी। बिफोर दैट हम इंजॉय करेंगे ये अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

హలో 9 8 2 1 0 2 6 2 1 2 BPL. అరే 9 8 2 0 0 2 6 2 3.

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर आपके पास आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपसे सेल के बारे में, और सेल के टाइम पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसी कैसी टेक्टिक्स जो है वो कंपनियां अपनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और कैसी कैसी प्लेस पर आपको सचेत रहना है, कौन कौन सा वो मोड़ है जहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना है ताकि आप ज्यादा खर्चा करने से बच जाएं। इसके बारे में आज आपसे बातें हो रही हैं, और ऑर्डर करने के बाद की सावधानी क्या होती है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। हमने बात की इससे पहले 24 घंटे के नियम के बारे में और डार्क पैटर्न के बारे में, जिसमें कि दो पीस बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट में डील खत्म हो जाएगी, जल्द से जल्द करें, ये सब चीजें शामिल होती हैं जो कि कंपनी की अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए स्ट्रेटजीज होती है। तो उसके झांसे में आपको नहीं आना है। वही ऑर्डर आपने प्लेस किया है उसके बाद भी कुछ सावधानियां होती हैं जो आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी चेक करके ही हमेशा आप कोई ऑर्डर प्लेस करें। देखिए, सेल में कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोडक्ट्स पर नो रिटर्न लिखा होता है, तो सामान खरीदने से पहले चेक कर लें कि पसंद न आने या फिर अगर गलत साइज आ जाता है तो ऐसी कंडीशन पर वापस करने की सुविधा है भी या नहीं। तो नो रिटर्न अगर उस पर लिखा है तो आप उसको खरीदने से बचें जब तक कि आप पूरा उसके बारे में श्योर ना हो जाएं। वहीं ओपन बॉक्स डिलीवरी या और अनबॉक्सिंग का आप ऑप्शन रख सकते हैं। देखिए, जो महंगे गैजेट्स होते हैं या हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो उसमें आप OBD यानी कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो आपको चुनना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो पैकेट खोलते समय बिना रुके अपने मोबाइल से अनबॉक्सिंग का वीडियो, यस अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर आप एक बार बनाएं, क्योंकि थैले के अंदर प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर क्या निकल जाए ये यू नेवर नो, है ना। कई बार ऐसे स्कैम्स भी हो जाते हैं, फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें जागरूकता वाली होती हैं। इस विषय में आप खुद भी जागरूक रहें, अपने परिवार वालों को भी बताएं और हमेशा से यही करें। या तो ओपन बॉक्स डिलीवरी का आप विकल्प चुन सकते हैं या फिर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना सकते हैं। और सेल में असली बचत वही है जनाब जो आपकी जरूरत को पूरा करे, ना कि वो जो डिस्काउंट के नाम पर आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल मैं यही कहूंगी दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है और मुझे जाना होगा ताकि अगले प्रेजेंटर आए आपसे ढेर सारी बातें करें, है ना। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, और जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की किताब पर, जिसे लिखा है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने। वो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उन्होंने ही हमारे सुभारती आजाद हिंद रेडियो को नारा दिया राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। आज के भाग में हम बात करेंगे कार्य का सम्मान को लेकर। दोस्तों, परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं अपनी किताब के माध्यम से। वो कहते हैं कि याद रखें, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व है। समाज को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति और हर कार्य का योगदान होता है। उदाहरण के लिए अपने शरीर को देखें, प्रकृति ने आपके शरीर में विभिन्न अंग बनाए हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अमुक अंग का काम छोटा है? सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार हमारा समाज होता है। समाज के संचालन के लिए विभिन्न लोग विभिन्न कार्य करते हैं, तभी समाज, परिवार और देश चलता है। किसी भी काम को हीन भावना से या हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हर काम को सम्मान के साथ देखना चाहिए। किताब के माध्यम से डॉक्टर साहब हमको समझाते हैं कि आप अपने स्कूल के सफाई कर्मचारी को देखिए, वो अगर अपना काम ना करे तो स्कूल गंदा हो जाएगा। क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? एक बढ़ई को देखिए, वो आपकी मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर वो अपना काम ना करे तो क्या आप आराम से बैठ पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? आप बिजली के मैकेनिक को देखिए, यदि वो बिजली की रिपेयर ना करे और बिजली चली जाए तो क्या आप अपना कोई भी काम सुलभ तरीके से कर पाएंगे भला? हर कार्य, चाहे वो बढ़ईगिरी हो, बिजली का काम हो या सफाई का या कोई भी काम, सबका अपना महत्व है। जब आप ये सोच विकसित कर लेते हैं तो आप सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बनते बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। जी हाँ, एक सिविक सेंस वाला नागरिक। आगे किताब हमको समझाती है, सिखाती है, क्या आप कभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? क्या आप कभी अपने घर में अलग अलग जगहों पर, विभिन्न जगहों पर जमी हुई धूल की सफाई करते हैं? क्या आप अपने स्कूल की सफाई में अथवा अन्य कार्यों में वहां के शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की सहायता करते हैं? क्या आप कभी अपनी कॉलोनी के पार्क की सफाई स्वयं करते हैं या उसकी सफाई में कोई सहायक बनते हैं? क्या आप अपने छोटे कपड़े स्वयं धोते हैं? क्या आप कभी अपनी माताजी या भोजन बनाने वाले कर्मी की भोजन बनाने में मदद करते हैं? क्या आप अपनी कमीज में स्वयं बटन टांग सकते हैं, लगा सकते हैं? क्या सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में आपको कुछ आता है? क्या सुबह उठकर अपना बिस्तर स्वयं लगाते हैं, बंद करते हैं? क्या आप कभी सब्जी स्वयं धोते हैं, छीलते हैं या काटते हैं? क्या आप अपने घर में उपलब्ध भूमि या जमीन या गमले में कभी कोई सब्जी, किसी के बीज बोते हैं और उसमें से निकले हुए पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, उससे उपजी हुई ताजी सब्जी लाकर अपनी माताजी को या पिताजी को देते हैं? क्या आप खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं चौके या रसोई में धुलने के लिए रखने जाते हैं या मेज पर ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने वे बर्तन जिसमें आपने खाना खाया हो कभी खुद भी धोते हैं? क्या आप बाजार से अपने घर का सामान लाने में अपने पिताजी या माताजी की सहायता करते हैं? क्या आपकी मेज टूट जाए तो क्या आप उसे खुद ठीक कर सकते हैं? यदि इन सभी बातों में से आप कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते तो आज से ही शुरू करें। आप कह सकते हैं कि इन कामों को करने के लिए तो आपके घर में अलग अलग कार्यकर्ता काम करते ही रहते हैं। यदि ऐसा है तब भी आप उनका हाथ बटा सकते हैं। ये सब करने से आप आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वयं काम करने का महत्व क्या होता है दोस्तों? व्यवसायिक कार्य क्यों सीखने चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ ये व्यवसायिक कार्य सीखने से क्या आवश्यकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि जब भी आप व्यवसायिक कार्यों जैसे बढ़ईगिरी, प्लंबिंग या बिजली का काम सीखते हैं तो आप अपने को अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इतनी सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ पर आपको किताब से पढ़कर बताई, दोस्तों जरा एक बार सोचिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, आपके माता पिता थे, पुराने जमाने में टीवी हो, रेडियो हो, घर में प्रेस हो, फ्रिज हो या कोई बिजली उपकरण हो, या अलमारी हो, सेफ हो, स्टूल हो, टेबल हो, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता या दादा वगैरह सब खुद से ठीक कर लिया करते थे, जबकि वो न बढ़ई थे, न मिस्त्री थे, न बिजली ठीक करना जानते थे। वो थोड़ा थोड़ा कार्य पहले जमाने के लोग सभी करते थे, पर आज के जमाने में हमको लगता है कि हम भला कोई दूसरा काम क्यों करें। नहीं दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कुछ स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए। राष्ट्र अनुभूति किताब में परमादेन्य डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको सिखाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी ही देर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम करने के लिए ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी ही देर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अच्छे खासे पैसे लेकर जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे काम करना आप जाने, जैसे आपके पिताजी आज भी प्रेस ठीक कर लेते हैं, रेडियो या टीवी ठीक कर सकते हैं, आज भी वो घर के छोटे मोटे कार्य खुद कर सकते हैं, हर काम के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, वैसे ही आने वाली पीढ़ी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको आज के खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना की ये कड़ी कैसी लगी जरूर बताएगा।

आपके फीडबैक दीजिए 9639012111 पर या हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके, मैसेज करके हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। जय हिंद।

अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम बोल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका भी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है। यह है, इसको कहते हैं

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और हमारा ये खासम खास कार्यक्रम है स्टूडियो में। आज के इस खास एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है आदरणीय एस के अरोरा सर को। सर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जिस बुक के बारे में सर हम चर्चा करते हैं, राष्ट्र अनुभूति और राष्ट्र चेतना, ये कार्यक्रम है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर लिखते हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? सद विचारों और सत कर्मों का संगम ही चरित्र कहलाता है।
2: बिल्कुल।
1: मैं चाहता हूं कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, जरा आप भी इस पर थोड़ी रोशनी डालें सर।
2: देखिए ऐसा है, इस बात के लिए साधुवाद है डॉक्टर साहब का कि उन्होंने दो शब्दों में सारी की सारी व्याख्या कर दी
1: जी।
2: इस किताब की ब्यूटी ये है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं फैलाया उन्होंने। दो शब्द है उनमें ही चार लाइनों में सारी व्याख्या कर दी चरित्र की। ये है क्वालिटी ऑफ थॉट कि आपको समझने में देर ना लगे, उनको समझाने में देर ना लगे, पिन पॉइंट
1: जी
2: जिसको बोलते हैं बात। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है
1: जी,
2: क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे एक होता है हमारा व्यक्तिगत चरित्र
1: जी,
2: एक होता है राष्ट्रीय चरित्र
1: जी।
2: मेन अगर मैं इसको बांट दूं तो मोटे हिस्सों में
1: जी,
2: तो एक व्यक्तिगत चरित्र है, एक मेरा अपना अपना सिस्टम है, मैं क्या सोचता हूँ क्या करता हूँ,
1: ठीक
2: तो वही
1: जी।
2: और एक राष्ट्रीय चरित्र है कि मैं राष्ट्र की बात अगर कर रहा हूँ तो मेरा क्या चरित्र है, मैं राष्ट्र को किस दृष्टि से देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बात घूम फिर के वही है
1: जी
2: कि मैं देखता कैसे हूँ और उस देखे हुए को मैं अपने कार्यों में परिलक्षित कैसे होने देता हूँ, उसे परिवर्तित कैसे होने देता हूँ,
1: ठीक
2: वो चीज है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सा वो आता है कि अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो दो तरह की होती है, एक अटेंडेड अवेयरनेस एक अनअटेंडेड अवेयरनेस। जिस चीज में आप अटेंडेड अवेयरनेस में होते हैं आप बहुत कॉशियस होते हैं उसके बारे में, मतलब कहने का जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जहां आपका मैं जुड़ा हूं, अपनत्व जुड़ा है, वहां पे आपको सब कुछ। लेकिन उसको वो जो अपनत्व जुड़ा है अगर हम उसका फैलाव कर दें थोड़ा सा, कोई भी जो पौधा उगता है वो बीज वो पहले हुआ चार पत्ते आए, फिर छह, फिर दस, फिर बारह, फिर ब्रांचेस, फिर वो एक विशाल वृक्ष में कन्वर्टेड हो गया और बहुत सारे लोगों को छाया और उसने रेजिडेंस देना प्रोवाइड कर दिया, फल फूल देना शुरू कर दिया। नदियों का विस्तार भी इसी तरह से है, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो एक सीधा सीधा चरित्र का आईना है हमारे लिए कि आप क्या सोच रहे हैं उसको आप आगे परिलक्षित कैसे कर रहे हैं, आप बता कैसे रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। आपने सोचा कि सब बहुत अच्छा हो, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे सब रास्ता दे दें, मेरे लिए सब ऐसा करें, मेरे लिए ऐसा करें, मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे नौकरी टाइम पे मिल जाए, पढ़ाई अच्छी मिल जाए, वो सब कुछ मिल जाए, ठीक है। मतलब मी सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, मेरे आसपास बस
1: सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए जी,
2: ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप मुझसे कनेक्टेड है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ
1: जी,
2: ऐसा संभव नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूं, सब कोई मेरे लिए सब कुछ करे, मैं राष्ट्र के हित में कुछ ना सोचूं, राष्ट्र मेरे हित में सब कुछ सोचता रहे, मैं प्रकृति के हित में कुछ ना सोचूं, प्रकृति मेरे लिए सब कुछ सोचती रहे, मैं समाज के लिए कुछ ना सोचूं, समाज मेरे लिए सब कुछ सोचता रहे।
1: वो ये बिल्कुल वही बात है ना सर कि भगत सिंह दूसरे के घर में होना चाहिए, मेरे बच्चे अपना काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो चरित्र एक इतनी बड़ी एक चीज है कि भाई आप अच्छा सोचिए
1: जी सर,
2: और अच्छा करिए बस, इससे ज्यादा तो कुछ कहा ही नहीं गया।
1: सर हमारे परिवारों में बच्चों को भी चरित्र निर्माण किया जाता है या संस्कार दिए जाते हैं, और जो भी माता पिता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ज्यादातर मोबाइल देखते हैं आजकल, वैसे संस्कार तो मोबाइलों से ही ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी अगर कोई नई पीढ़ी के माता पिता आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को कम से कम वो चार बातें तो जरूर सिखाइए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए?
2: देखिए सबसे सबसे पहली चीज बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं इस संसार में हूं, है ना, तो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे आसपास है, वो सब मेरा है। अपनत्व का भाव आपको जगाना पड़ेगा, खाली वही उसका नहीं है जो उसके हाथ में है, जो किसी और के हाथ में है वो भी एक तरह से उसी का ही है, तो तभी उसके मन में एक अपनत्व की भावना जागना, जैसे पहले बोलते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग,
1: हाँ जी,
2: वो चीजें सिखाई जाती थी
1: जी।
2: फिर ये सिखाया जाता था कि इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। पहले स्कूल में ये सब चीजें बताई जाती थी, अब नहीं बताई जाती हैं, आजकल कम बताते हैं
1: जी।
2: तो वो चीजें जो हैं, अगर हम घर में, इसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना नहीं, सिंपल हम घर में व्यवस्था ही ऐसी बनाए कि बच्चे को बताने से ज्यादा दिखाए, उसे अपने साथ बिठा के खाना खिलाइए, उसको भाई बहन है तो उसके साथ शेयर करने की आदत डालिए, कुछ ऐसा उसको दीजिए। हम टिफिन उसी को देते हैं कि भाई ये तू ही खाना और किसी को मत देना। बच्चा स्कूल जाता है तो हम ये सोचते हैं बस यही पहलवान हो जाए, हाँ। ये सब कुछ खा ले,
1: हाँ।
2: लेकिन अगर हम उसको एक दिन हफ्ते में ऐसा करें कि उसको कुछ ऐसा बना के दें कि आज ये शेयर करके खाना सबके साथ, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं खास खास उनके साथ शेयर करना, तो छोटी चीजें हैं ना। जैसे मुझे अच्छे से याद है, हमें मेरे नाम का ही एक मेरा फ्रेंड होता था, उसका भी नाम सतीश था, मेरा भी सतीश
1: जी।
2: तो उस हम एक ही उम्र के थे, तो उसकी माता जी मुझे उसको सतीश नहीं बुलाने देती थी।
1: अच्छा।
2: वो बिहार से थे तो मुझे बोलती थी बेटा इसको मीता बुलाओ,
1: अच्छा
2: मीत बुलाओ या किसी और कुछ और नाम से बुलाओ, इस नाम से मत बुलाओ। तो मैं उससे क्या होता है आंटी वाले, जो उम्र कम होती है तो उम्र तो क्या कम होती है, वो तो जो ईश्वर ने दे के भेजा वो है। लेकिन सिद्धांत यह है कि इस बहाने मतलब एक कनेक्टिविटी डेवलप हुई, वो मुझे आज तक याद है
1: जी।
2: और भी तो बहुत सारे दोस्त थे ना, नहीं याद है,
1: नहीं याद है।
2: वो एक छोटा सा सेंटेंस कि मीता बुलाओ, ने सतीश को मेरी चेतना में जिंदा रखा हुआ है आज भी। ये बड़ी बात है ना
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भी बहुत सारे दोस्त थे, नहीं याद है। तो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में, छोटे बच्चों के साथ छोटी ही चीज की जाए। तो संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है आप इंजेक्शन की सिरिंज में भर के उसको किसी इंजेक्ट करवा दें तो संस्कार चल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। संस्कार क्या है? संस्कार जो आपके आसपास हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, वही संस्कार डेवलप हो जाता है। जो आप लगातार देखते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं, जो आप लगातार करते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। अब देखिए लोग बच्चों को ले जाते हैं गुरुद्वारे में या कहीं मंदिर में, वहां सेवा करवाते हैं उनसे, चप्पल इधर रख उधर रख बेटा, इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो धीरे धीरे वो संस्कार में डेवलप हो जाएगा ना
1: जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
2: हम ऐसा कुछ एकदम कुछ नहीं कर सकते एट रैंडम। तो हम बच्चों को पिछली अच्छी बातें बताएं तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को। कुछ ऐसी कहानी सुनाएं, कुछ ऐसी बात बताएं, कुछ ऐसा सीरियल दिखाएं जिससे हमारा पुराना जो हमारा गौरव था वो भी उसको बच्चे को पता लगे, और नई चीजों का भी साथ साथ समावेश करते हुए उसको हम ये भी बताएं कि ये जो आज है ये भी तुम्हारा है, तुम्हें कल लोग तब याद रखेंगे जब तुम इसको सुंदर बनाओगे जैसे कि तुम उनको याद कर रहे हो जिन्होंने इसको पहले सुंदर रखा होता। तो इस किताब की बड़ी सार्थकता है, इसलिए मुझे ये इसमें बड़ा आनंद आया
1: जी
2: कि छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। आप बहुत सरल भाषा में दो दो लाइनों में पूरा जीवन, ये मतलब आप सोचिए 60 पन्नों में समेट दिया।
1: बिल्कुल
2: डॉक्टर अतुल कृष्ण
1: जी,
2: कमाल है
1: जी। दोस्तों ये वार्ता ऐसे ही जारी रहेगी, बहुत ही सुंदर, सर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और समझा रहे हैं, तो यकीनन आपको भी समझ आया होगा कि बच्चों का पालन पोषण या उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए या फिर उनको किस प्रकार से हमें संस्कार देने चाहिए। अगर आपके बच्चे को 10 महापुरुषों के नाम नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि दुनिया जहान की चीजें तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके महापुरुष कौन रहे, बच्चों के आदर्श कौन बनेंगे। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि एक छोटे बच्चे को कम से कम 10 नाम तो बताओ, उन लोगों के बारे में बताओ तो सही। इस बारे में सर आपका क्या कहना है?
2: मुझे बड़ा अचंभा होता है कि महापुरुषों के तो छोड़ दीजिए, अपने दादा दादी के नाम भी बच्चों को नहीं पता है आज की डेट में।
1: नहीं पता होते सर,
2: नाना नानी के नाम नहीं पता, पर दादा परदादी किसी को पता होगा तो परदादा परदादी का नाम तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा।
1: नहीं पता, बिल्कुल ठीक है।
2: और उससे ऊपर की पीढ़ी का तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो अगर हम अपना जो परिवार है, जो बिल्कुल जहां से हम आ रहे हैं रूट्स, इसीलिए मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों का भी हमें एहसास होना चाहिए, हमारा जो जहां से निकल के आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, हमें उस रास्ते का ही ज्ञान नहीं है।

0: फेमस हुए हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हमारे भी अपने कुछ लोग रहे होंगे जो जिन्होंने बहुत कुछ खोया होगा लेकिन वो सामने नहीं आ पाए।
1: तो सर ये
0: तो हम अपने बच्चों को अगर पहले अपनों का महत्व बताएं उसके साथ ही हम ये भी दूसरे को भी जोड़ सकते हैं। तब हम उसका बोलेंगे तुम बाल गंगाधर तिलक का नाम 10 बार बोला तुम्हें रट जाए तो रट लेगा वो, कोई कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर वो उसके चिरंतन जो वो होता है जिसके मानस जो है जिसमें वो हमेशा रहे नाम, वो संभव नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब वो किसी कनेक्टेड चीज से आपका वो नाम उसको बताया जाएगा।
1: जैसे सर ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो है सूर्यवंशी थे या उन पीढ़ियों दर याद रहता है लोगों को, ज्यादातर दादाजी तो चलो अवेलेबल भी होते हैं कि परदादा ये थे वो वहां से आए थे वो उन्होंने इतनी गरीबी देखी या उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, तो बच्चे के अंदर भी एक भाव प्रकट होगा कहीं ना कहीं कि देखो मेरे परदादा या मेरा खानदान वहां से चला आ रहा है, तो फीलिंग भी डेवलप होगी। सर बहुत अच्छी बात सर आपने यहाँ पर,
0: तो वही पहले आप घर में मजबूत हो जाओगे तब तो आसपास मजबूत होगे ना, तब तो आप और लोगों को जानने में इंटरेस्ट आएगा आपका।
1: हमें ये
0: मैं
1: तो
0: को भी मेरे फादर मेरे दादाजी आजादी की लड़ाई में थे और मंगल पांडे ने जब वो विद्रोह शुरू हुआ था तो उसमें उसके वो भी एक हिस्सा थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मंगल पांडे के साथ हाथ मिला खड़े थे वो,
1: जी
0: ना
1: जी,
0: पर मैं कह रहा हूँ कि जो विद्रोह की चिंगारी मंगल पांडे ने शुरू की थी कालीपल्टन मंदिर से,
1: जी
0: उस पूरी वो जो एक अभियान चला था उस अभियान का तुम्हारे परदादा जी हिस्सा थे। और सच बात यह है कि हर किसी का दादा परदादा उसका हिस्सा रहे, ऐसा नहीं है कि मेरे ही परदादा रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे, सबके रहे होंगे किसी न किसी रूप में, सब नहीं। तो उस समय तो एक भाव चलता था गांधी जी के पीछे चले सारे चले,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई गांधी जी के ने जो ये वाला अभियान चलाया था नमक वाला,
1: नमक दांडी मार्च,
0: हाँ, तो तुम्हारे परदादा उसके साथ जुड़े हुए थे,
1: एक फीलिंग आएगी ना।
0: तो मैं ये कह रहा हूँ जुड़े हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ दांडी मार्च में थे,
1: जी जी,
0: पर जुड़े तो थे, सबने छोड़ा था ना नमक। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि भाई एक दिन उपवास कर लो, तो सारे जुड़े रहे। तो इस बात को मैं ये कहूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा बोला था देश में अन्न की कमी थी तो एक दिन वो करो, तो और मैं अगर इसको इस ढंग से कहूँ कि देखो जब उन्होंने ये बोला तो उस समय तुम्हारा दादाजी ने ये बोला कि सब उपवास रखेंगे सोमवार को क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है और देश को इस तरह से करना,
1: तो वो प्राउड,
0: तो वो बच्चा कनेक्ट करेगा ना, वो प्राउड भी फील करेगा। अब उसको दो नाम याद हो गए, उसको दादाजी का भी नाम याद हो गया और उस महापुरुष का भी नाम याद हो गया,
1: बिल्कुल सर,
0: और पूरा जीवन याद रहेगा। ये छोटे छोटे तरीके हैं,
1: इसे कोई और तो सिखाएगा नहीं, आपके पेरेंट्स या परिवार ही सिखा सकता है
0: नेचुरली। बाकी तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी चलती है ना, वो तो सिखाएगी।
1: लेकिन बहुत अच्छी चीज आज के कार्यक्रम की रही दोस्तों, आज हम मैंने भी ये सीखा कि अपने बच्चों को अपने फैमिली ट्री के बारे में बताना चाहिए कि आपकी पीढ़ियां आपकी पुश्तें कहां से चली आ रही हैं। जी जी, तो दोस्तों अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात, आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएगा। सर चलते चलते आपका कोई संदेश?
0: छोटा सा संदेश यही है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में हैं, 6 ऋतुएं हैं, बहुत तरह का खाना है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के रंग रूप हैं, विविध वनस्पतियां हैं, इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और ये एक ऐसा देश है जिसमें वीर भोग्या वसुंधरा जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े वीर हुए हैं यहाँ पे। आज कोई वहां कभी जाके देखते हैं राजस्थान में तो उनका जो महाराणा प्रताप का जो वो है तलवार और उनका जो ढाल
1: कवच, और
0: कवच 160 किलो का है,
1: जी जी,
0: कवच जितना वजन नहीं होता आज की डेट में, दो
1: नहीं, नहीं होता सर।
0: तो ये हम वीर भोग्या वसुंधरा में पैदा हुए हैं और शस्य श्यामला धरती है ये, इतनी सारी नदियां, इतने सारे यहाँ पे देवी देवता और भगवान किसी न किसी रूप में पीर पैगंबर सब यहाँ पे आए,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा, हमारी बहुत लकी है इस चीज के लिए।
1: जी
0: तो मेरा संदेश ये है कि ये हमारी धरोहर है, जैसे हम एक छोटे से सोने के टुकड़े को भी लाल कागज में लपेट के लॉकर में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं जिसका कोई पता नहीं है,
1: जी
0: तो इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, हम इसके लिए भी इसको भी एक डायमंड की तरह एक सोने की तरह इसको भी सजा के संवार के संभाल के रखें,
1: जी
0: कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें, दो पौधे लगाएं उसको, और कुछ नहीं लगा सकते तो जो लगा हुआ उसको पानी दे दें कभी,
1: जी
0: उसके सूखे पत्ते ही तोड़ दें, कुछ ना कुछ सफाई में ध्यान दें, कुछ चीजों को

0: सुथरा रखें, अपने देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें
1: जी,
0: चार लोगों को ये एहसास हो, जब आप बोलेंगे तो दो चार और बोलेंगे, मैं ही बोलूं कि क्या है यार इंडिया वहां तो ऐसा वैसा, तो फिर दूसरा भी कोई क्यों बोलेगा, जब मुझे ही सम्मान नहीं है अपनी किसी वस्तु पे तो किसी दूसरे को क्यों होगा।
1: बिल्कुल, सिर्फ समस्या नहीं समाधान के बारे में भी बात करते चलेंगे। दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर होगी मुलाकात। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद, 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

जय हिंद वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है जय जवान जय किसान। और आज के स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे आजकल की खेती के बारे में। आजकल हमारे खेतों में गन्ने की कटाई जोरों पर है, साथ ही साथ सरसों की बुआई की भी जो शुरुआत हो चुकी है। और आप भी सरसों बोते हैं तो आपने भी तैयारियां कर दी होंगी और अगेती सरसों की फसल की बुआई हो चुकी है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर हमारे मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र होता है, हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय पर गन्ने की कटाई होती है, कटाई के बाद खेती का जो प्रबंधन होता है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। पत्ती हो या जो फसल से बचने वाले अवशेष होते हैं उनका सही इस्तेमाल का तरीका हो, या फिर हमारी अगेती फसल की बुआई की तैयारियां, जैसे कि सरसों की बुआई का समय चल रहा है। देखिए, सरसों अगर आप बोते हैं इसमें आपको ज्यादा लाभ होने के चांस बन जाते हैं। तो ये सभी टिप्स लेकर हाजिर हूं मैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बढ़िया सी रागनी के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, गन्ने की कटाई का समय जोरों पर है, तो अपने टाइम पर फसल हमको जरूर काट लेनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है कि ध्यान देने वाली, अगर आप कटाई करने के बाद उसको मिल पर डालते हैं तो मिल पर अच्छे प्राइस मिलते हैं, अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको कोल्हू या कलेसर पर डालते हैं, क्योंकि जो मझले किसान या छोटे किसान होते हैं वो ज्यादातर कोल्हू या फिर कलेसर पर ही अपने गन्ने को डालते हैं, वहां से उनको टाइम पर पैसा मिल जाता है। और छोटे किसान को अगली फसल बोने की तैयारी भी करनी होती है, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो फसल को रोक सकते हैं, मिल चलने के बाद वहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि मिल से पेमेंट भी थोड़ा बाद में मिलता है। कोल्हू या कलेसर पर गन्ना डालने का मुख्य कारण जो होता है छोटे या मझले किसान भाइयों का, वो होता है जल्दी और टाइम से पहले उनको पैसा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी अगली फसल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और अपनी फसल को भुना सकते हैं। गन्ने की जो किस्म होती है, पकने की जो अवस्था होती है, देखो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो शुगर मिल होते हैं वो हर प्रकार का गन्ना एक्सेप्ट नहीं करते, हर प्रकार का गन्ना नहीं लेते हैं, वो उनको कुछ खास किस्म की ही गन्ने की जरूरत होती है। तो अगर आप कोई ऐसा बीज बोते हैं जिसकी सप्लाई हम शुगर मिल में नहीं कर सकते, तब आपका गन्ना वहां पर नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीनें हैं, तब आप ऐसी किस्म की बुआई कीजिए जो शुगर मिल भी ले सकता हो या जिसमें आपको ज्यादा लाभ कमाने का मौका मिल सकता हो। आगे कुछ और बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है इस देसी गाने का।
1: और श्रोताओ, ये बात की समय की, एक कॉलेज की लड़की एक लड़के से नजर लड़ जाती है,

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: जय हिंद, यह मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं गन्ने की कटाई को लेकर और अपनी अगेती फसलों की बुआई की तैयारी को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपका ये खास कार्यक्रम है जय जवान जय किसान, और इस कार्यक्रम में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप हमेशा टाइम से पहले तैयार हो जाइए आने वाली फसलों के चयन को लेकर भी, हमारी फसलों की तैयारी को लेकर भी, और कैसे गांव में रहकर हमारे किसान भाई ज्यादा कमाई कर सकते हैं अच्छी बेहतर।

तैयारियां किस प्रकार हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सुझाव है या अपनी पसंद की कोई रागनी या देसी गाना भी आप सुनना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9639012111। आपकी इसी स्पेशल कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को गांव में रहते हुए ज्यादा कमाई करने के जो साधन है वो मुहैया हो जाए और हमको गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े।

किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम और मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि गन्ने की कटाई और अगेती फसलों की बुआई के बारे में। अगर आप सरसों बोते हैं इस बार तो आपको ज्यादा लाभ होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, सरसों की खपत और डिमांड दोनों ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में देसी तेल या असली जो तेल होता है सरसों का, उसकी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि आजकल नकली पैकेट बंद या डब्बा बंद जो तेल आता है, लोगों का उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है। तो सब चाहते हैं कि वो खुद की सरसों लेकर उसकी पिलाई करने के बाद या असली वाला तेल किसी भी तरीके से मिल जाए, इसलिए डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसान भाई, आपके पास मौका यह है कि अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो आपको ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास पर्याप्त जमीनें हैं तब आप इस समय सरसों की बुआई कीजिए, अगेती बुआई कीजिए और 3 से 3.5 या 4 महीने बाद आप इसकी कटाई कर लेंगे, आपको सरसों से कमाई हो जाएगी और अगेती आप गन्ने की फसल बो देंगे, उसे हम फागुन की गन्ने की फसल बोलते हैं। या फिर आप ऐसा माने कि एडवांस में अगेती फसल जब होती है तो जब आप उसकी बुहेर को भी डालते हैं तो भी उसमें आपको लाभ मिलता है, क्योंकि गन्ने की फसल जल्दी और बेहतर कमाई करके दे सकती है।

सभी कलीमें लेखक महोदय ने बहुत विशेष बात कही कि इन गावणियों के साथ इनकी घराड़ी कैसे रहती है, इनका आपस में

और आखिरी कली में लेखन होते ने बहुत सोच विचार करके चौथी कली में इन गाँवियों के बारे में

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

भोजने भजने करण की खच्चर चाहिए जगह कंद हो पाचा चाहिए जगह कंदी।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड।

0: न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में। आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। जय जवान जय किसान आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में बात होती है खेती की और किसानी की। रागनी और देसी गाने आप यहाँ पर सुनते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद की कोई रागनी या देसी गाना सुनना चाहते हैं तो नंबर आपको बताइए 9639012111। दोस्तों, सरसों की बुआई की हम बात कर रहे थे। मेरठ और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सरसों की बुआई की जो किस्म होती है उसका बहुत बड़ा मैटर करता है। आजकल अलग अलग कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे बीज लेकर आ चुकी है, हाईब्रिड बीज का माना है, तो आप भी अपनी पसंद का कोई अपने बजट के अनुसार अच्छा बीज चुन सकते हैं। तकरीबन 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बीज शुरू हो जाता है और ये 1500 रुपए किलो 1200 रुपए किलो तक भी आपको मिल जाता है। अब आपको देखना है कि आपके यहां पर जो आप सरसों बो रहे हैं उसमें आपको कैसी उपज मिलेगी, मतलब आप जो भी कुछ बोएंगे जैसा भी बीज बोएंगे वैसी फसल आपको मिलेगी। तो जो आप अगेती किस्म का चुनाव करते हैं एक बेहतर बीज एक हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल आपको करना है ताकि टाइम पर आपकी जो फसल है लगभग 3 से 3.5 महीने बाद जब आपकी सरसों पक जाएगी तो उसमें तेल ज्यादा होना चाहिए और उसकी पहचान यही होती है कि दाना जो होता है वो भारी होता है, उसमें तेल ज्यादा निकलता है, सरसों ज्यादा निकलती है, तो आपको कमाई होने के जो चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चुनिएगा एक अच्छी क्वालिटी का बीज जो कि पूरी तरह से उपचारित हो। एक सिंपल साधारण सी सरसों बोने से बचिएगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी का बीज अगर आप चुनते हैं तो आपको बेहतर उपज प्राप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें, और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी, या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: हेल्थ सही लाभ करी, खुशियों से भर जाए जिंदगी नई।
2: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई, वस्तु कृष्णा के साथ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर।
3: अरे स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है, आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बता देंगे जी। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
0: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे।
0: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
1: देखो, ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: यू हो जा।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
1: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
1: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब यह है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
1: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगे?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँ, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
1: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
1: देखो बात यो है, क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हो गया है यो। इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूँ
0: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
0: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
1: ना जी ऐसा तो ना है, इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, पहला गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
0: अच्छा,
2: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
0: ठीक है।
2: और तीसरा जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
0: अच्छा।
2: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
0: ठीक है।
2: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे रहा है ना तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद भी करें।
0: अच्छा।
2: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
0: बताओ,
2: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे उसे।
0: अच्छा।
2: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
1: बिल्कुल होवे जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
0: जी।
1: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सिहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: यानी IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी, आप क्या कहेंगे?
2: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVFCM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए। अच्छा। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
0: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर ले, तो क्या IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर यह बिल्कुल नहीं होने का।
0: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए? सेहतिया जी,
1: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
2: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
0: जी,
2: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
1: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोलें, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं, इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी
आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कही। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

प्रस्तुति। जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती हैं। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें। उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है सेहत से ही लाभ कई, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है। विकास केवल लोगों की संख्या से नहीं होता, विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, बच्चे सुरक्षित और पोषित हों, महिलाओं को सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पुरुष परिवार की जिम्मेदारी में बराबर भागीदारी निभाए, युवाओं को अपने भविष्य के लिए सही अवसर मिले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जनसंख्या से। परिवार के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पति पत्नी परिवार से जुड़े फैसले मिलकर साथ में ले, बच्चे और उनके बीच का उचित अंतर रखना, कितने बच्चे होने चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर बच्चे पैदा नहीं करने, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दादी नानी, कोई मोहल्ला, कोई पड़ोसी, कोई यार रिश्तेदार बोले कि नहीं बच्चे और पैदा करो तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अधिकार केवल आपका है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है, ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की, हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए, अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बातें करेंगे विश्व मानक दिवस के बारे में, जो कि हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के महत्व को उजागर करने और उन विशेषज्ञों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो वैश्विक मानकों के विकास में योगदान करते हैं। पहली बार ये दिवस 14 अक्टूबर साल 1970 को मनाया गया था। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारजे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं विश्व मानक दिवस के बारे में, अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे साल 1946 की, जब लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना हुई। वहीं पहली बार 14 अक्टूबर साल 1970 में विश्व मानक दिवस मनाया गया। बातें चलती रहेंगी, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के माध्यम से। बातें चल रही हैं विश्व मानक दिवस पर। मानकीकरण के महत्व की अगर बात करें तो उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करना, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करना, इनोवेशन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, ये मानकीकरण के महत्व हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपने ट्यून इन कर रखा है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बातें चल रही हैं विश्व मानक दिवस के बारे में, अब इसके उद्देश्य जानते हैं। तो मानकों के महत्व को उजागर करना तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, इसी के साथ उपभोक्ता और उद्योगों को जागरूक करना कि कैसे मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करते हैं, और वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और नीति निर्माण द्वारा मानकों के निर्माण में किए गए कार्य की सराहना करना, ये कुछ इसके उद्देश्य होते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारति कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। एक अच्छी वाली बात जो ये कहती है, गलती ही एक मात्र तरीका है जिससे पता चलता है कि आप मेहनती हैं। सीधा और साफ सा मतलब इतना है कि जो मेहनत करता है उससे ही गलती होती है, और उसी गलती की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी गलती को सुधारते हैं तो फिर वो आगे चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी भी काम को करें तो पूरी परफेक्शन के साथ ही कर दें। छोटी ही सही आपसे गलती जरूर होगी, और उसी गलती से आप सीखना शुरू करते हैं। उसी गलती में जब सुधार लाते हैं तो एक दिन आकर आप परफेक्ट हो ही जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते आपसे गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो उस गलती को, उस चूक को नजरअंदाज किया कीजिए और अपनी मेहनत बरकरार रखा कीजिए। और बस ये जरूर ध्यान रखा कीजिए, जो गलती आपसे हो गई वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। बाकी जैसे आप अपनी मेहनत करते हैं उस मेहनत को थोड़ा और बढ़ाइए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाएं, जब तक आपको जो चाहिए वो आपको मिल ना जाए। ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आर शे पंकज को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
2: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रही हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। और अभी थोड़ी सी बात करते हैं, एक सीरियस वाली बात है ये, अगर ध्यान से सुनेंगे आप तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या ये सच में करना चाहिए या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिएगा, मैं ये आप पर ही छोड़ता हूँ। देखिए, कितने ही कैंपेन्स के थ्रू, कितने ही एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, कितने ही नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये बातें पहुंचाई जाती हैं जनता तक कि पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए। और मैं तो यहाँ पर जब भी होता हूँ रेडियो पर, ये मैसेज ज़रूर आप तक पहुंचाता हूँ, आपको कहता हूँ, जब भी आपको बाय बाय बोलता हूँ तो मुझे ये कहना ही होता है कि हरियाली फैलाइए, पेड़ पौधे लगाइए। अब आप इस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि समझनी ज़रूर चाहिए। देखिए, पेड़ पौधे लगाने से जो हरियाली फैलेगी वो काफ़ी बेनिफिशियल है सभी के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना, हवा भी पॉल्यूटेड हो चुकी है और इस खराब हवा के कारण 40% भारतीयों की उम्र तकरीबन 9 साल तक घट सकती है, एक स्टडी ये बताती है। सो, एक बात तो ये, जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से एक पौधा आप ज़रूर लगाएं एंड दूसरों को भी इस बात को समझाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये, घर से आप जब भी बाहर निकलते हैं और जा रहे हैं कहीं बाहर और कहीं पर आपको कुछ दिखता है कि पॉल्यूशन हो रहा है या खराब हवा चल रही है या धूल उड़ रही है, तुरंत अपने चेहरे को ढकना ना भूलें। वैसे आप ये काम कर लेते होंगे, जब भी आपको हवा लगती होगी कि पॉल्यूटेड है या धूल उड़ रही है तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं करना है और अपना ध्यान हमें खुद ही रखना है, इस पॉल्यूटेड हवा से हमें खुद को बचाना है। बाकी एक प्रॉमिस तो आप ज़रूर कर लें खुद से कि हमें एक पौधा लगाना ही लगाना है और इस बात को दूसरों को भी समझाना है, ठीक है। बात मेरी अच्छी लगे अगर आपको तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, सभी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। एंड पॉल्यूटेड हवा से और किस तरीके से बचा जा सकता है ये आप भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं, अपने सजेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल सुनते रहिए मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और भाई देखिए, अपने शोज में तो मेरी यहां पर आपसे ढेर सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़कर कहीं और बात करना चाहते हैं तो वो जगह हो सकती है हमारे सोशल हैंडल्स। सो अभी तक अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर तो कनेक्ट हो जाइए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको फेसबुक यानी कि मेटा पर भी मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी चाहते हैं। यहां पर कनेक्ट होने से क्या होगा कि आप हमें कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव भेज पाएंगे, अपने पसंदीदा ट्रैक के लिए भी फरमाइश आप कर पाएंगे। सो जुड़ना क्यों नहीं है जब इतने सारे फायदे हैं। अभी जुड़िए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना 45 आरजे पंकज और बैठा हुआ हूं अभी अपने स्टूडियो में एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा हूं और आपकी बातों को भी सुन रहा हूं, आपके मैसेजेस भी पढ़ रहा हूं जो आप मुझे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर भेज रहे हैं। वैसे फिलहाल मैसेज आया हुआ है एक रिक्वेस्ट को पूरा कराने के लिए। हाँ जी, हमारे एक लिसनर है जिनका नाम है जसमीत, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज प्ले कर दीजिए क्या बात है 2.0। तो चलिए जसमीत, बिना देर के प्ले करते हैं आपका ये ट्रैक, आपका ये सॉन्ग, एंजॉय कीजिए।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहाँ जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM से मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से, और इसमें अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। और आज अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए, कुछ अच्छी कविताएं सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रख्यात कवि सुमनेश सुमन जी। सर, स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार, मैं सुमनेश सुमन आप सबको प्रणाम करता हूं आपके रेडियो के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना से ही और उससे पहले से ही, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ा वयस्क हुए, युवा हुए, तो उन्होंने देश के बारे में सोचा और देश में देखा कि ये हमारा देश ही नहीं है, हमारे देश का किसी दूसरे लोगों का राज है। पिछले कई सौ वर्ष दूसरे गुलाम भी रहे पर अंग्रेजों की गुलामी चल रही थी, तो उन्होंने एक इस प्रकार से आंदोलन शुरू किया। जहां मैं पहली बात कहना चाहूंगी, 21 अक्टूबर से पहली के उन्होंने ये सोचा कि इस देश के हर नागरिक को यह पता हो जाना चाहिए कि हम देश में आजादी का आंदोलन हमारे देश में प्रारंभ हो चुका है। कोई भी आदमी बाद में ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं था कि आजादी का आंदोलन चल रहा है। उन्होंने इस तरह के नारे दिए कि कोई भी आदमी हो, वो हर आदमी को इस युद्ध में, इस आंदोलन में भाग लेना होगा, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना होगा। वो अगर बिल्कुल मोर्चे पर ना रह सके तो उसके पीछे ना रह सके तो तीसरी लाइन में रहे, लेकिन कोई भी कहीं भी रहे, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सीमा पर नहीं जा सकता है, युद्ध में नहीं खड़ा हो सकता है, भाग नहीं ले सकता है, तो कम से कम लोगों में जन जागरण करे कि हमारा देश, हमारे देश की आजादी का आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। हम सब नेताजी को नमन करते हैं। आज तो मीडिया का जमाना है, संप्रेषणीयता का जमाना है, तब तो मीडिया भी नहीं था। उन दिनों 1945 से पहले ही वो देश नहीं दुनिया भर में इतने लोकप्रिय हुए थे, ऐसा कोई उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा कोई दूसरा क्रांतिकारी किसी देश में हुआ ही नहीं, जैसे नेताजी को मानने लगे थे। और सारा देश नहीं, दुनिया भर के लोग, देशवासी लोग भी और जो राष्ट्रवादी लोग थे, किसी भी देश के थे, वो नेताजी को एक आदर्श मानने लगे थे। हम प्रणाम करते हैं वह 21 अक्टूबर के लिए, उनको जो अखंड भारत का उनका सपना था, जहाँ उन्होंने शपथ ली, जहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया, और तब से उन्होंने नारा लगाया कि अब देश हमारा आजाद हो चुका है, एक युद्ध बाकी है, युद्ध चल रहा है। मैं आपके इस कार्य को भी, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के इस बहुत बड़े मिशन को प्रणाम करता हूँ, और हम सब साथ हैं 21 अक्टूबर को, और हर साल हर वर्ष हम उनके साथ प्रयास करते रहने का आपके साथ है।
2: इतने प्रख्यात कवि हमारे बीच मौजूद हैं, कोई कविता हम ना आपसे सुने, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: जी, मैं एक छंद और एक छोटी सी एक कविता के एक अंश में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, उस दिन के लिए, उस समय के लिए जब हम नेताजी को याद करते हैं। एक्चुअली हम डॉक्टर हरिओम पवार जी के साथ रहते हैं, और डॉक्टर हरिओम पवार जी और डॉक्टर अतुल कृष्ण दो एक बिल्कुल दो जिस्म एक जान होते हैं। वो उनका कोई भी कार्यक्रम हो, अगर डॉक्टर अतुल जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और वो भी नेताजी पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो डॉक्टर हरिओम पवार जी ना हो उसमें, ऐसा कभी संभव हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ, चार पंक्तियाँ उनके नाम देना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, जो मैं लिखने का प्रयास किया है। सैकड़ों बरस अपमान का जो विष पिया, लगती थी नियति भी अपनी गुलाम जी, और शहर शहर कत्लगाह, सारा देश था तबाह, जिंदा लाश रह गया था आदमी का नाम जी। आजादी के लिए मशाल जब निकला वो लाल, आजादी के लिए मशाल जब निकला वो लाल, देश के ना अंग्रेज भी उसे भी राम जी, और देश के लिए जिया वो, देश के लिए गया वो, देश के लिए जिया वो, देश के लिए गया वो, कोटि कोटि ऐसे देश भक्त को प्रणाम जी, देश के लिए जिया वो। और एक कविता, काफी बड़ी कविता, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो प्रयास किए, उस आंदोलन में सब लोगों की भागीदारी रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत देर देर रात तक अपने अलग से भाषण दिए बंगाल में, ऐसे मुझे लिखा पढ़ा है मैंने, कहीं सुना है, पढ़ा भी है, कि वो कहीं जैसे गोभियां कहीं खेत में उग रही होती थी, तो वहां खड़े होकर वो भाषण देते थे रात रात भर। उन्हें समझते थे जैसे नरमुंड हैं, सिर हैं लोगों के, और मैं भाषण दे रहा हूँ। इसी तरह उन्होंने देश को, पूरे देश को फिर दिन भर में, रात भर में जगाया। मैं कुछ पंक्तियां वहां से पढ़ना चाहता हूँ। एक जिद थी उन्हें कि हर आदमी इस आंदोलन से जुड़े, कि सदियों की घोर गुलामी से परेशान था, गोरों की कपट नीति से बड़ा हैरान था, सदियों की घोर गुलामी से परेशान था, गोरों की कपट नीति से बड़ा हैरान था, पर अधीनता से मुक्ति तेरा अरमान था, और तुझे जिद से जगाना हिंदुस्तान था, और तुझे जिद से जगाना हिंदुस्तान था, दिल्ली चलो बोल कर जाने कहाँ खो गया, देश के लिए

0: तेरी भारत माँ तुझे पुकारती रही। और एक पंक्तियां सुनने कुछ दे रहा हूँ। स्वर से फिजाओं में भी प्राण फूंक देता था, वादियों में नित नई जान फूंक देता था। तन मन धन अर्पण सब मातृभू के वास्ते, न्याय के उसने बनाए थे अलग रास्ते। त्रस्त बेबसों में जब झलकती थी दीनता, यक्ष प्रश्न ओढ़ के खड़ी थी पराधीनता। यक्ष प्रश्न ओढ़ के खड़ी थी पराधीनता, यक्ष प्रश्न ओढ़ के खड़ी थी पराधीनता। वीणा के स्वरों में जब व्याकुलता पलती, रचे नया इतिहास लेखनी मचलती। चरवेति वाला सत्य जानकर, न्याय व समानता सभी को मिले ठान कर। तुमने कहा दुखों से मुक्ति मैं दिलाऊंगा, तुम मुझे खून दो मैं आजादी लाऊंगा। तुम मुझे खून दो मैं आजादी लाऊंगा। किंतु देश भोग रहा कौन सा संतराश है, कौन सी आजादी है न जिसमें सुभाष है। कौन सी आजादी है न जिसमें सुभाष है। दिल्ली चलो बोल कर जाने कहाँ खो गया, देश के लिए सुभाष तू तो वरदान था। दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत न तुझे पुकारती रही। दिल्ली तेरा रास्ता निहारती रही, तेरी भारत न तुझे पुकारती रही।
1: तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा आजाद हिंद रेडियो भी नेताजी को ही समर्पित है और देशभक्ति से संबंधित हम कार्यक्रम करते हैं। हमारी भी एक टैगलाइन है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: आज मैं जैसे पहले बताया है कि आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया भर में जितना नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उनके जीवन काल में उस समय तक था जब तक लोगों ने देखा, उससे भी कहीं ज्यादा उनका नाम बढ़ा है। उनके कार्यों को याद किया जाता है और उनके बहुत सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है। मुझे खुशी है कि हम उस देश में पैदा हुए, हम उस देश के वासी हैं जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरीखे एक इतने बड़े क्रांतिकारी ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया पर अपने कार्यों के लिए छा गया। मैं प्रणाम करता हूँ उन्हें और आपके इस मिशन को प्रणाम करता हूँ।

और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए, फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की ओर से। अभी अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्याम मोहन गुप्ता जी। आप पवार वाणी फाउंडेशन के ट्रस्टी और ट्रेजरर हैं और उत्तर प्रदेश उपभोक्ता समिति के डायरेक्टर भी हैं, राज्यपाल द्वारा नामित। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका।
1: सुभारती यूनिवर्सिटी और सुभारती यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे इस मेरठ शहर के लिए एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि वो सालों साल तक याद रखी जाएगी। मैं इस अवसर पर सिर्फ दो सुभाष जी के छोटे छोटे संस्मरण बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े IAS थे, विश्वास पाटिल जी। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये संस्मरण, वो किताब इतनी महानायक के नाम से आई है, तो उसके दो छोटे छोटे संस्मरण है। पहला तो ये है कि जब 1945 के अंदर आजाद हिंद फौज के ऊपर लाल किले के प्राचीर से केस चला, तो उस समय सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो पे केस चला, तो पूरे देश को ये पता चला कि सुभाष क्या थे और क्या नहीं। उस समय का मुझे एक संस्मरण याद आता है, किताबों के द्वारा मैंने पढ़ा है कि उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर महाराणा प्रताप और शिवाजी के नाम पे महिलाएं अपने बच्चों का नाम रखती थी, लेकिन जब पूरे देश को उस लाल किले की प्राचीर से पता चला तो महिलाओं ने अपने नवजात शिशु का नाम सुभाष चंद्र बोस भी रखना शुरू कर दिया। घरों के अंदर भगवान कृष्ण, राम और कुछ क्रांतिकारियों के फोटो हुआ करते थे, अब बराबर के अंदर सुभाष चंद्र बोस का भी फोटो लगने लगा। हम उन सुभाष चंद्र बोस पे बहुत गर्व करते हैं। उस समय 1945 गांधी का अहिंसा का गरुड़ पूरी दुनिया के अंदर माना जाता था, उस समय सुभाष ने हिंसात्मक तरीके से अपने 43,000 युवा, जिसके अंदर से 40,000 युवा थे और 3,000 महिलाएं थी, एक सेना बना के, एक कविता थी ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी महानायक के अंदर ये 28 लाइन की कविता है, तो उसकी पहली पंक्ति थी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और देश की 43,000 माओं ने और पिताओं ने अपने बच्चों को देश के लिए दे दिया। दूसरी घटना ये है कि उस समय सबसे बड़ी हमारे देश की परेशानी थी कि जिन्ना का आंदोलन चरम उत्कर्ष के ऊपर था। जब जिन्ना का आंदोलन था तो जिन्ना ने हिंदुस्तान के उस समय के सबसे बड़े नेताओं, चाहे वो पटेल हो, गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जाकिर हुसैन हो, सबके पास गए और ये कहा कि हम अलग पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। तो सबने एक ही स्वर के अंदर ये कहा कि भाई हम सब कुछ नहीं है, अगर आपको इसका निर्णय लेना है तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी से हाँ करवानी पड़ेगी। पता चला उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ऑस्ट्रिया के अंदर थे, वहाँ जाके वो सिद्धई जी गए, जिन्ना के PS हुआ करते थे और जिन्ना के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वहाँ जाके उन्होंने बहुत कोशिश की सुभाष नेताजी से मिलने की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। 4-5 दिन बाद उनकी पत्नी एमिली, आप सब जानते हो नेताजी की, उसके द्वारा वो उनसे मिले। मिलने के बाद उन्होंने एक ही शर्त रखी कि नेताजी, हमारे हिंदुस्तान के सारे नेता इस बात पे सहमत है कि पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, लेकिन सबने एक ही बात कही कि आप नेताजी अगर इस पे हाँ भरेंगे तो ये कुछ पॉसिबल हो सकता है। नेताजी ने जो उस महानायक किताब के अंदर लिखा है, नेताजी ने अपने रिवॉल्वर निकाली और रख दी और ये कहा, हिंदुस्तान के नेताओं को कह देना कि अगर किसी ने भी मेरे भारत को खंडित करने की कोशिश की तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी नेता को नहीं छोड़ूंगा, और ये कहा प्रेस में भी ये बात कह देना, ये इस तरह का नेता, नेताजी हम कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से उन्होंने देश को आजाद करवाया। और आज सुभारती यूनिवर्सिटी के द्वारा, डॉक्टर अतुल जी के द्वारा, जो उनके पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक जो देशभक्ति है, और हमारे आदरणीय पवार जी बैठे, सुमदेश जी बैठे, मैं सबको नमन करते हुए, डॉक्टर RP सिंह जी भी है, बस इतने ही कहके अपनी बात को।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप सभी यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती, अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।